श्रीमन नित्य निकुंज बिहारिणे नमः। श्री बिहारी बिहारिणी जो जयति, श्री स्वामी हरिदासो विजयते तराम। ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हमारी श्यामाजू श्री राधा रानी हैं। जो ब्रजमंडल 84 कोस में फैला हुआ है, जिसमें कि श्री राधा रानी का हृदय स्वरूप हमारा श्रीधाम वृंदावन है, तो आइए मेरे साथ मिलकर युगल छवि का ध्यान करते हुए और श्री राधा नाम का आश्रय लेकर ब्रजमंडल के प्रमुख स्थानों का नाम लेते हुए श्रीधाम वृंदावन से अपनी यात्रा को प्रारंभ करिए। और मेरा विश्वास है कि इस मानसिक ब्रज यात्रा से आपको वास्तविक ब्रज की यात्रा करने का ही फल मिलेगा।

अब श्री धाम वृंदावन में अपनी ब्रज यात्रा को विश्राम देते हुए श्री वृंदावनेश्वरी, श्री राशेश्वरी, श्री हरिदासेश्वरी राधारानी के चरणों का ध्यान करते हुए मस्ती में झूमते हुए उनके नाम का कीर्तन करिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सने बिहारी लाल की जय।

0: उस गली से गुजर हुआ नहीं कि पलट।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 7 a.m. in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.
0: ना मुश्किल हो जाता है।
2: फिर तो जरूर कोई ऐसी याद होगी जिसका वास्ता आपके दिल से होगा।

0: हाँ तो नैनों में
1: बिंदिया है,
0: माथे पे
1: बिंदिया है,
0: तो बालों में
1: गजरा है,
0: आँखों में
1: गजरा है।
0: ओहो, फिर

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 8 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

पर लैला मजनू शिरी और फरहा इनका सच्चा इश्क जमाने को अब तक है यार।

रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to रेडियो गाना and it's 9 AM in India. Keep listening to रेडियो गाना. Thank you.

जान, हमने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया, अब अगर तुमने बेवफाई की तो खुदा कसम हम इन्हीं लहरों में डूब मरेंगे।

0: किया था तभी।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 11 a.m. in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 12 नून इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: रोजी, ए रोजी, रोजी पहले क्रिसमस में तो सबसे पहले आ जाया करती थी, मगर कुछ दिनों से लगता है तुझे कुछ हो गया है। कहीं किसी से लव वव तो नहीं हो गया?
1: क्या?
0: ओफो, लव यानी प्यार, मोहब्बत।
2: वो होने से क्या होता है?
0: जब मुझे हुआ था तो
1: तो
0: मुझे नींद नहीं आती थी,
2: मुझे भी नहीं आती,
0: मुझे भूख नहीं लगती थी,
2: मुझे तो प्यास भी नहीं लगती,
0: दिल में दर्द होता था।
2: दर्द तो मुझे भी रहता है।
0: बस, यानी कि तू गई काम से।
2: क्या?
0: ओफो, यानी कि तुझे प्यार का रोग लग गया है, और इस रोग की बस एक ही दवा है।
2: वो क्या?
0: वो ये कि जिससे प्यार हुआ है, अगर वो दिल पे हाथ रख दे तो दर्द मिट जाएगा। रोजी, ए रोजी, ओ गॉड,
3: क्या हुआ यो-यो?
0: देखो ना क्या हो गया है अपनी रोजी को।
3: ये रोजी तो हर रोज कोई ना कोई नाटक करती है।
0: नहीं, ये नाटक नहीं है, ये तो बेचारी सचमुच बेहोश हो गई है। कोई दवा दारू करो ना इस बेचारी का।
3: ये जो दौरा है ना, ये मिर्गी का है और इसका इलाज सिर्फ जूता सूंघा। देखा, जूते का नाम लिया और दौरा गायब।
1: बाय गॉड, आज क्रिसमस का दिन है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये दौरा मिर्गी का नहीं है।
3: तो तूने बुलाया और मैं चला आया। यारों का टाइम मत बर्बाद कर, सच सच बोल तुझे कष्ट क्या है।
4: मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है,
5: अच्छा,
4: मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to रेडियो गाना and it's 1 PM in India. Keep listening to रेडियो गाना. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 2 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: अरे हे सूरदास का औलाद, तो के सुनाई नहीं पड़ा था हम कहाँ कहाँ थे, हम कहाँ ठहरा करने को कहा गया गया?
1: हम ये बकवास सुनने नहीं आए हैं, हम यहाँ के राजा हैं और अब हम लौट कर आए हैं, हम राजा की तरह रहेंगे।
0: अरे हाई देखो इकालिया गैंडा के राजा की तरह रहेंगे, यानी अब हम तहार पर जा की तरह रहिए।
2: गोविंदा,
0: अरे गोविंदा नहीं जी, हवलदार बोलिए आप।
2: हवलदार साहब, लगता है दो डंडे देने ही पड़ेंगे।
0: हाँ ऐसा कहा,
3: दे दीजिए।
0: अरे रजवा का औलाद, इन्हें आओ रे, पुलिस का भाका नहीं समझता है क्या रे? हम पुलिस वालन का हंसना मना है, चलिए। अरे बगुआ
2: गोविंदा,
0: और हम तो के हुकुम देते हैं ई दारू का अड्डा बंद कर दे।
2: मगर दारोगा जी, हम दिन भर तो हर ड्यूटी बजाई, मगर रात को ये धंधा
0: बंद। खड़ा करो, बंद। हम कह दिया सो कह दिया, अरे दिन का बात नहीं है, रात का बात नहीं है, शराब पीना बुरी बात है तो शराब बंद का
2: बंद। लेकिन गोविंदा, नहीं नहीं नहीं हवलदार, नहीं नहीं नहीं दरोगा साहब, कल तो शिवरात्रि का दिन है।
0: अब अरे शिवरात्रि के दिन का बात हम कहाँ कहा थे, अरे कल तो छुट्टी का दिन होते हैं, भांग पिया जाते, का पिया जाते।
4: जो चिराग हमने जलाए वही चिराग हमारा घर जलाने की कोशिश कर रहे हैं।
5: इससे पहले कि चिराग एक भड़कती आग बन जाए, उसे बुझा देना ही शुभ देती है।
4: जरा हम भी तो देखें उनकी लौ में कितनी गर्मी है।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

ये शिव मंदिर है, कहते हैं वहां जाकर सच्चे दिल से जो भी मुराद मांगो वो पूरी हो जाती है। किसी दिन ले जाऊंगा वहां, भगवान से मांग लूंगा तुम्हें।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

किधर है?

माचिस की कांडी लो।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 5 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार थीम चॉइस शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार ऑफ द वीक में सुनिए दिए गए स्टार मेहमान पर आधारित गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार की ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

सत श्री अकाल, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम। और आज है गुरुवार की शाम, एक खूबसूरत शाम। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना आरजे अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे। आज की ये शाम है उन एहसासों के नाम जो कभी दिल की धड़कन बनकर धड़कते हैं और कभी प्यार बनकर मुस्कुराते हैं और कभी मोहब्बत बनकर दिल में उतर जाते हैं और कभी कभी यही इश्क हमें इतना दीवाना बना देता है कि बस एक ही चेहरा नजर आता है। तो आज की जो थीम है वो है दिल, धड़कन और प्यार, मोहब्बत, इश्क, चाहत, जान, दीवानगी। यानी आज रेडियो हॉटस्टार पे बजेंगे वो नगमे जो सिर्फ इन कानों तक नहीं सीधे दिल तक पहुंच जाएंगे। तो अगर किसी के लिए भी थोड़ी सी मोहब्बत है, थोड़ी सी चाहत है या कोई ऐसा जिसका नाम लेते ही दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है, तो समझ लीजिए आज का ये पूरा शो सिर्फ आपके नाम है, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना दोस्त आरजे अमन और आप मेरे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे। क्योंकि यहाँ सिर्फ गाने नहीं बजते हैं दोस्तों, यहाँ एहसास गुनगुनाते हैं। तो चलिए इन शाम की शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत के साथ जिसमें इन प्यार भी है, चाहत भी है, दिल की वो बात भी है जो शायद हम नहीं कह पाते हैं। सुनते रहिए ये गाना मेरी पसंद का, आते हैं इस गाने के बाद।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो आपको दीवाना बना दे। सच में इन कुछ गाने ऐसे होते हैं जो सीधे दिल में उतर जाते हैं, और ये गाना सच में मेरे दिल में ऐसी जगह बसा हुआ है कि हम क्या ही बताएं। वैसे बहुत से दोस्त जुड़ चुके हैं, सभी का वेलकम करते हैं। सबसे पहले जुड़ने वाले हमारे सरफराज भाई, सरफू पटेल जी साउथ अफ्रीका से जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं। अशोक देशमुख जी आपका भी वेलकम करते हैं, सर्वेश भगत जी आपका भी वेलकम करते हैं, और मुबारक हुसैन भाई मुबारक हो, आप भी जुड़ गए हैं तो आपका भी वेलकम करते हैं। राधा कृष्ण गोप जी आपका भी वेलकम करते हैं, और मनीषा शर्मा जी आपका भी वेलकम है, वेलकम है, वेलकम है। साथ ही साथ हमारे गजानन सरकार जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी, और निशांत राय बोले जी आपका भी वेलकम है, और शिल्पा बेन जी जुड़ चुकी हैं आज बहुत पहले, क्या बात है, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। संध्या पटेल जी जुड़ चुकी हैं आपका भी वेलकम करते हैं, संध्या पटेल जी। सुनीता गोप जी जुड़ चुके हैं आपका भी वेलकम है, जाकिर खान जी भी जुड़ चुके हैं आपका भी वेलकम है, जाकिर खान जी और सरोजी शेड़े जी आपका भी वेलकम है, और इन प्रीति राय दास जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। फिलहाल प्रोग्राम का आगाज करते हैं सभी, आज के मतलब क्या बताएं, आज के जितने भी गाने हैं ना, ओ माई गॉड, सच में आज मतलब सभी गाने बहुत ही प्यारे प्यारे हैं। ओके, तो आज मैं जिस गाने से आगाज करने वाला हूँ, कहाँ से शुरू करूँ, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि सभी गाना एक से बढ़कर एक है। तो फिलहाल यानी कि प्रियंका जी के गाने से मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि तुमसे जो देखते ही प्यार हुआ, एंजॉय कीजिए।

0: लिंकिंग रोड कभी वार्डन रोड
1: वेलकम है और रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे दीवाना बना दे दीवाना बना दे और दीपक कुमार गायकवाड़ जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और एम ताहिर साहब भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और सर्वेश भगत जी क्या कहते सुनते हैं।
2: आरजे अमन सर जी शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते जी। प्रियंका जी अपने गाने में शामिल किए हैं, धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
1: वेलकम जी आपका भी। और सोनू गौतम जी लिखते हैं कि जिन प्रियंका जी का गाना एकदम लाजवाब, बहुत धासु गाना है, तुमसे ही देखते ही प्यार हुआ, बहुत ही शानदार गाना सुनवाने के लिए उनको धन्यवाद देते हैं। और हमारे राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं इस शानदार डिमांड के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ओके। और यहाँ पे शिल्पा बेन जी लिखते हैं कि तुमसे देखते ही प्यार हुआ, बहुत ही बढ़िया गाना लगा है मुझे। और शेर सिंह सैनी जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं, रामपुर उत्तर प्रदेश से लिखते हैं कि प्रियंका जी गाना एकदम लाजवाब जी। गजानन सलोकार जी लिखते हैं कि यानी प्रियंका जी के पसंद बेहतरीन, लाजवाब सुनकर मजा आ गया है, उनको धन्यवाद देते हैं। और विष्णु चंद्र जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और जाकिर खान जी अच्छा देखते हैं, ओके। और यहाँ पे अशोक देशमुख जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो यानी कि प्रीति रायदास जी का है, सुनना चाहती हैं अनाड़ी नंबर वन का ये बहुत ही प्यारा गाना, इंजॉय कीजिए। सभी को डेडिकेट कर रही हैं।
3: <ओ, ओ, ओ, laughs>

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे। और प्रियंका जी क्या कहती है, जरा इनकी सुनते हैं ना।
1: गुड इवनिंग अमन जी।
0: स्टार्टिंग
1: में आपने हमारा सॉन्ग सुनाया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया।
0: अच्छा।
1: और मैं थोड़ी सी दो लाइन गुनगुनाना चाहती हूँ।
0: अच्छा, अच्छा।
1: ऊपर वाले की है माया,
0: क्या बात है,
1: जिसने हमको खूब मिलाया।
0: कहाँ
1: भूले भटके आज मिले हैं, देखो कितने फूल खिले हैं। ये बहुत ही प्यारा सॉन्ग है जो okay. कि मेरा फेवरेट है। थैंक यू सॉन्ग सुनाने के लिए।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे जुड़ चुके हैं पूजा भास्कर जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और एम ताहिर जी लिखते हैं कि हमेशा की तरह इन प्रियंका जी के पसंद आज भी अपने आप में हिट और लाजवाब लगी है। धन्यवाद देते हैं उनको भी। और प्रीति राजा जी लिखते हैं कि थैंक यू मेरा गाना प्ले करने के लिए, और सभी दोस्तों का भी शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। और यहाँ पे राधा कृष्ण को लिखते हैं सुपर डिमांड के लिए धन्यवाद देते हैं। अगला जो डिमांड है मनीषा शर्मा जी का है, सुनना चाहती हैं बोल दो ना जरा। जी बिल्कुल, बोल दो ना जरा। इंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: बिल्कुल मैं भी कहूंगा नहीं, वैसे फीडबैक बहुत सारा आ चुका है। निशांत भाई लिखते हैं बहुत ही प्यारा गाने के लिए धन्यवाद देते हैं उनको, और अशोक देशमुख जी लिखते हैं मनीषा जी की पसंद सुपरहिट लगी है उनको भी शुक्रिया, और मनीषा जी लिखते हैं वेरी वेरी थैंक यू अमन जी आपने मेरा गाना प्ले कर दिया, दोस्तों का भी शुक्रिया फीडबैक देने के लिए, और अनिल नायक जी जुड़ चुके हैं बहुत बहुत वेलकम है अनिल नायक जी, और गजानंद जी लिखते हैं मनीषा शर्मा जी की पसंद बेहतरीन लगी है, लाजवाब लगी है, उनको धन्यवाद देते हैं ये फीडबैक।
1: धीरे धीरे हम दोनों में प्यार हुआ है पक्का।

0: गाना सुनवाने के लिए। थैंक यू।
1: वेलकम जी आपका भी, और यानी कि संध्या पटेल जी लिखेंगे बहुत ही प्यारा गाना, थैंक यू सो मच। और ये क्या कह रही है,
2: मुझे नींद आती

0: कुछ हमसे होगा नहीं, बोल दो ना जरा, दिल में जो है छुपा मैं किसी को कहूंगी नहीं।
1: बहुत ही प्यारा सॉन्ग था, थैंक यू।
2: वेलकम जी आपका भी। और अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो यानी कि सरबजीत सेठी जी का है, सुना चाहते हैं? सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है, बिल्कुल।

0: है,
1: बिल्कुल सुनाई देती है। जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है, वैसे फीडबैक बहुत सारे आए हुए हैं, शामिल करते हैं पहले ये।
2: वो आपके पहलुओं में ऐसे बैठे,
1: अच्छा।
2: वो आपके पहलुओं में ऐसे बैठे के शाम

गई है। वैसे यहाँ पे और भी बहुत सारे फीडबैक है, जैसे एमडी सलीम जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं एमडी सलीम जी। ये है हमारे यानी किसी का पूछे, वेलकम करते हैं।

0: सुनाई देती है जिसकी धड़कन एक्सीलेंस तंपली धन्यवाद देते हैं और मिले पंजी जो चुके मत मत कर में मिला दीदी आपका और ये फिर में
1: अस्सलामुअलैकुम आरजे अमन सर जी, मैं आरिफ सिंधी जुड़ गया हूँ रेडियो हॉट स्टार से तमिलनाडु चेन्नई से, शुक्रिया।
0: वेलकम जी आपका भी और जिहाल मस्ती मुकुम बनंजी से वाला गाना मुझे बहुत ही शानदार लगे, शब्बीर कुमार लता मंगेशकर की आवाज़ में मजा आ गया सुन के। और जाकिर जी लिखते हैं कि जिहाल मस्ती वाला सॉन्ग ये ब्लॉकबस्टर सॉन्ग है, थैंक यू सो मच इस गाने को सुनाने के लिए। और हाँ भाई ये संजय दीदी क्या कहती है,
2: इस सॉन्ग की तो जितनी तारीफ करूँ ना उतनी कम है, इतना प्यारा सॉन्ग सुनाने के लिए थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारी चॉइस है, मजा ही आ गया सुन के आज तो।
0: जी दीदी बिल्कुल सही कहा आपने और मुझे भी ये गाना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। राधा कृष्ण को भी लाजवाब डिमांड के लिए धन्यवाद देते हैं और मनीषा जी लिखते हैं सुपर सॉन्ग जी, इन्होंने ऐसा ही लिखा है, मैं ऐसा ही पढ़ रहा हूँ। और यहाँ पे विष्णु जी ने लिखा है कि ओल्ड इज गोल्ड गाना मुझे अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं। और प्रमोद कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आगरा से। और फिलहाल अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो हमारे आरिफ सिंधी जी का है, वो सुनना चाहते हैं कि कौन हो तुम जो दिल में समाए जाते हो। भाई मैं तो प्यार हूँ ना, इंजॉय कीजिए इस गाने को फिल्म माशूक से।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन, और मीना जी जुड़ चुके हैं यानी साउथ अफ्रीका से, सॉरी साउथ अफ्रीका से मतलब यूएस से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत आपका वेलकम करते हैं, और आई एम सॉरी मिस्टेक हो गई गलती से। एम तहिर जी लिखते हैं कि अमन सर जी ओके, मैं कोशिश करूँगा सर। और अनिल नायक जी लिखते हैं कि ओके, और सर्वेश भगत जी कहते हैं
1: आरजे अमन सर जी, आरिफ सिंधे जी अपने गाने में शामिल थे, सभी भाई अपने अपने गाने में शामिल थे, सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू।
0: वेलकम जी आपका भी, और यहाँ पे जितेंद्र जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है, और हमारी माँ जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है माँ जी, आपको मेरा प्रणाम है। और अशिल भाई बहन जी लिखते हैं कि कौन हो तुम जो सपनों में जो दिल में समाए जाते हो, गाना मुझे लाजवाब लगा है। और निशांत साहब बोल लेते हैं कि बहुत ही प्यारा गाने के लिए धन्यवाद देते हैं। आरिफ सिंधी जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
2: शुक्रिया आरजे अमन सर जी, मेरी पसंद का गाना प्ले करके मुझे सुनवाया, और जो दोस्तों ने फीडबैक दिया उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। मैं आरिफ सिंधी, तमिलनाडु चेन्नई से, सुनते रहो रेडियो हॉट स्टार आरजे अमन सर जी के साथ, जो दीवाना बना दे।
0: वेलकम जी आपका भी, और यहाँ पे मनीषा जी लिखते हैं सुपर वाला सॉन्ग है जी बिल्कुल, और ये क्या कहते हैं इनकी भी सुनते हैं।
3: तुम किसका प्यार हो जवाब दो सनम, किसका करार हो

0: बहुत ही प्यारा सॉन्ग है
1: जी। बिल्कुल मुझे पता है, और राधा कृष्ण गोविंद सिंह की ही हर किसी को दिल से लगाया नहीं जा सकता है, और तुम्हारी तस्वीर को दिल से मिटाया नहीं जा सकता है। और मिल तो जाएंगे लाखों चेहरे दुनिया में, तुम मेरी जिंदगी का वो किस्सा हो जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। हाँ, भुलाने की क्या जरूरत है, बस बसाए रखे दिल में। और ये फीडबैक सुन लीजिए, क्या कहते हैं भाई आरिफ
2: जी। अस्सलामुअलैकुम।
1: वालेकुम सलाम।
2: गाना तो बहुत प्यारा है ये, कौन हो तुम जो दिल में समाए जाते हो, तो ये अदा और गाने का जो बोल है बहुत प्यारा है। बहुत बहुत धन्यवाद पसंद करने वाले दोस्त को, MD फैज आलम।
1: ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। गजानंद जी लिखते हैं कि आरिफ सिंह जी के पसंद मुझे बहुत पसंद है, उनको धन्यवाद देते हैं। इसी बात पर अगला जो डिमांड है मैं प्ले करूंगा सुनीता गोप जी का, ये मेरी पसंद आज लेके आई हुई है, तो सुनवाते हैं, इंजॉय कीजिए। दिल सुनता है, दिल कहता है, दिल मानता है। बिल्कुल

0: बिल्कुल दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि यानी कि कुछ गाने जो होते हैं ना, वो सिर्फ इन सुने नहीं जाते हैं दोस्तों, वो हमारे अंदर वो कहीं छुपी हुई वो किसी याद को बिल्कुल जगा देते हैं। और कभी किसी की वो मुस्कान याद आ जाती है, तो कभी कोई पुरानी मुलाकात, और कभी बिना वजह ही वो चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। तो शायद यही तो प्यार है ना, जहाँ कोई यानी पास हो या दूर हो, लेकिन उसका एहसास हमेशा दिल के पास लाता है। और आज की जो हमारी वो शाम है, ऐसे ही खूबसूरत एहसासों के नाम है। मैं हूँ आपका दोस्त अमन, आप सुन रहे हैं रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे। तो दिल को थोड़ा और भी करीब लाइए, क्योंकि लगता है जो भी गीत आज आने वाले हैं वो अपने खूबसूरत मोहब्बत का कहानी जरूर बयां करने वाले हैं। वैसे बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आए हुए हैं, और सुनते हैं ये क्या कहते हैं।
1: जय अमन सर, जी सुनीता गोप जी अपने गाने में शामिल किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे मीना कुमारी जी लिखते हैं, बहुत बढ़िया गाना लगा है, मजा आ गया, धन्यवाद देते हैं। और फैज जी क्या कहते हैं।
2: वाह क्या पसंद है जनाब, दिल आपका भी दिल बहुत खूबसूरत है, और सभी दोस्तों का रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे, सुनते रहिए। एमडी फैज आलम हैदराबाद से
0: जी, वेलकम करते हैं आपका भी हैदराबाद से आपका। और मेरे पास गोविंदा खंडाते जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं गोविंदा खंडाते जी आपका। सर्वजीत सिद्धि जी क्या कहते हैं।
3: धन्यवाद अमन सर जी, आपने मेरा गीत चलाया, और जिन्होंने मेरे गाने पर फीडबैक दिया उनका भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम बहुत ही शानदार चल रहा है, और सभी गीत एक से बढ़कर एक चल रहे हैं।
0: थैंक यू।
3: दिल सुनता है, दिल कहता है, दिल मानता है, तो सुनते रहिए हॉटस्टार जो सबको दीवाना बना दे। मैं सरबजीत सेठी फाजिलका पंजाब से
0: जी, धन्यवाद देते हैं आपको फीडबैक देने के लिए। और मीना कुमारी लिखते हैं कि लाजवाब पसंद है, बहुत मजा इस गाने को सुनकर। और राधा कृष्ण को भी देते हैं लाजवाब दीवाने के लिए, हम अपनी श्रीमती जी को धन्यवाद देते हैं। आत्माराम पंडित जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और यहाँ पे प्रमोद कुमार लिखते हैं कि सुनीता गोप जी की डिमांड औसम लगी है। और आर्य सिंधे जी लिखते हैं कि सुनीता गोप जी के पसंद बहुत ही शानदार, बहुत बहुत शुक्रिया उनको इस गाने को सुनाने के लिए। शिल्पा बेन लिखते हैं कि बहुत लाजवाब गाने के लिए धन्यवाद। अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ वो है हमारे

0: बिल्कुल बहुत प्यार आया है तुम पे, बहुत प्यार आया है तुम पे। और सुनीता गोपी सिंह अमन जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा गाना प्ले करने के लिए। फीडबैक सुनते हैं क्या कहते हैं सर्वे मगर जी।
1: हरे अमासा जी शेर सिंह सैनिक जी अपने गाने में शामिल किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी, लग रहा है कि आपकी तबीयत सही नहीं है। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि वाओ लाजवाब बेहतरीन नगमा, शानदार डिमांड, थैंक यू सो मच। और मीना दीदी जी लिखते हैं कि ये गाना बहुत अच्छा लग रहा है, सच में दिल खुश हो गया है। और यहाँ पे फीडबैक सुनते हैं।
2: अमन सर जी बहुत ही बढ़िया गाँव सॉन्ग सुल जाए सर, शुक्रिया मैं आत्माराम पटेल।

0: बना दे। अमन जी के साथ लुटाते रहिए प्यार और सुनते रहिए अपने पसंद के प्यारे प्यारे गाने। एमडी फैज आलम हैदराबाद।
1: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे इन विष्णु जी लिखते हैं कि बहुत प्यारा है तुम पर गाना, बहुत ही प्यारा है। और यानी कि पीपुरा जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा है तुम पे गाना, मस्त लगा है। और अजीत कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी।

और गजानन जी नृत्य की सुनीता गोप जी और शेर सिंह सैनी जी की पसंद लाजवाब लगी है। तो दोस्तों मतलब हम तो यानी कि कहते हैं कि यानी कि प्यार तो वो नहीं है कि जो सिर्फ साथ रहने से महसूस हो, यानी प्यार तो वो है कि जो दूर रहकर भी हर पल महसूस होता रहे, क्योंकि क्योंकि यानी कि कभी कभी कि मतलब किसी की भी आवाज़ इन सुनकर दिल मुस्कुरा देता है, तो यानी कि कभी किसी का नाम सुनकर हमारे चेहरे पर एक इन प्यारी सी मुस्कान आ जाती है, और कभी कोई बस इतना ही करीब हो जाता है कि वो हमारे सामने ही बैठा हो, ऐसा ऐसा फील होता है। यही तो इश्क है ना, यही तो चाहत है, यही तो दीवानगी है ना। और आपके दिल में भी कोई खास है तो प्लीज़ एक नगमा उनको डेडिकेट ज़रूर कीजिए आज के लिए, क्योंकि आज आज का जो थीम है ना बहुत ही प्यारा है। अगला जो डिमांड है वो यानी पूजा भास्कर जी का है, वो सुनना चाहती हैं ये गाना, इंजॉय कीजिए।

0: है, बहुत खूबसूरत है सूरत तुम्हारी, हमारी नजर इससे हटती नहीं है। ना ऐसे करो मुस्कुरा के सितम।
1: बहुत शानदार सॉन्ग लगा अमन भाई, शेर सिंह सैनी जी का दिल से थैंक यू इतना अच्छा गाना प्ले करवाने के लिए।
2: वेलकम जी आपका भी, और हमें शेर सिंह सैनी जी लिखते हैं कि अमन भाई बहुत बहुत शुक्रिया मेरा गाना प्ले करने के लिए। उन लोगों का भी शुक्रिया जिन लोगों ने गाने को पसंद करके फीडबैक दिया है। और सर्वेश भगत जी,
3: आरजे अमन सर जी, सब ये ठीक है, मुख में खैनी रखे हुए थे, थूक भरा हुआ था इसलिए आवाज़ थोड़ा कम थी, ठीक नहीं गया। आप पूजा भास्कर जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
2: वेलकम जी, और यहाँ पे यानी कि निशांत है, वो लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग है, थैंक यू सो मच। और गजानंद जी लिखते हैं कि पूजा भास्कर जी का पसंद लाजवाब लगा है। और विष्णु जी लिखते हैं कि यह गाना भी बहुत खूबसूरत लगा है। और एमडी फैजी देते हैं सुपर से भी ऊपर वाला, बहुत खूबसूरत नगमा है। अगला जो डिमांड है हमारे अशोक देशमुख जी, सर्वेश भगत जी, आत्माराम पाटिल जी, सभी की डिमांड है, सुनवाता हूँ।
4: नमस्कार अमन सर, मैं निम्बोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख।
2: वेलकम।
4: आज है स्टार थीम चॉइस, तो मुझे एक गीत सुनना है, फिल्म का नाम है गोपी किशन और गाने का बोल है, ये इश्क है क्या एक रोग बुरा, ना भूख लगे ना प्यास लगे। ये गीत सबसे पहले आपको और आपकी सुंदरता की मूर्त को और जितने भी हॉटस्टार सुनने वाले श्रोता है उन सबको ये गीत सुनवा दीजिए सर, धन्यवाद।
3: अरजय अमन सर जी, शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते जी। आज हमारा फरमाइश का फिल्म है गोपी किशन, और गाने का बोला ये इश्क है क्या एक रोग भला। और स्टार जो सबको दीवाना बनाते, सभी बड़े को प्रणाम, सभी छोटे को आशीर्वाद। हम सर्वेश भगत हजरतगंज जिला वैशाली बिहार से बोल रहे हैं। हमारा परिवार सतीश भगत, हेमंत भगत, बरकिशोर भगत, आनंद शेखर, आनंद प्रकाश, सुनील कुमार, मुनी कुमार, ईश्वर कुमार, मनोज जायसवाल, अशोक देशमुख जी, आत्माराम पाटिल जी, सैयद यूनुस जी, संतोष कुमार जी, मुन्ना जी, और आरजे अमन सर जी, सुंदरता की मूर्त जी, आरजे वंशिका जी, आरजे आकांक्षा जी, आरजे मिस परमार जी, आरजे आदिति जी, आरजे सोनी जी, आरजे रत्ना जी, और सभी आरजे और सभी भाई और सभी बहन और सभी लिसनर इसमें शामिल, सभी को सुनो जी, जयराम जी के।
5: हेलो प्यारे आरजे अमन खान सर जी, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, सुप्रेम नमस्कार। मैं आत्माराम पाटिल आ गया हूँ सर अपने थीम लेके, तो आज का मूवी है सर गोपी किशन, और गीत के बोल को जिस प्रकार के है सर, ये इश्क है क्या एक रोग बुरा, ना भूख लगे ना प्यास लगे,
2: हमें भी भूख नहीं लगती,
5: तो सर बिल्कुल सुना दो। आज हमें देर हो गई सर, क्योंकि अभी भी 7:45 है और हम बुलक कार्ट पर बैठे बैठे।
2: अच्छा, बुलक कार्ट पे
5: कपास लेके
2: कहाँ जा रहे हैं?
5: जा रहे हैं सर।
2: अच्छा, घर जा रहे हैं।
5: तो सबसे पहले कि मैं आपको सुनता की मौत को अशोक देखने की है, सर्वेश भगत जी है, वैसे जितने भी रेडियो हॉटस्टार पर सुन रहे हैं सभी के लिए आज का समर्पित है, सुना दूँ मैं। आत्मा पाटिल, थैंक यू।

0: अरे हम तो दिल दे चुके हैं सनम, फिलहाल मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आ चुके हैं। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि रेस्पेक्टेड सुरेश भगत जी, अशोक देशमुख जी, आत्माराम जी की ये सभी की डिमांड लाजवाब लगी है, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया और फीडबैक सुनते हैं इनका।
1: आरजे अमन सर जी धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद, हमारा तीन भाई का फरमाइश, अशोक देशमुख जी, आत्माराम पाटिल जी और हम सभी का गाना अपने प्रोग्राम में जगह दे दिए, आपको लाख लाख धन्यवाद।
0: ओके जी वेलकम है आपका भी। और रंजीत कुमार क्या कहते हैं?
2: आरजे अमन सर जी नमस्कार, गुड इवनिंग, आज थीम चॉइस शो में आज गाने की डिमांड है,
0: जैसा आप मुझे लिख कर भेजिएगा प्लीज। इस तरह से आप अगर गाने की डिमांड करते हैं तो आप वहीं पर सॉन्ग रिक्वेस्ट में अपना वॉइस भेज सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे मैसेज जो है वो सिर्फ फीडबैक के लिए है। ओके ये फीडबैक।
3: धन्यवाद अमन सर, आपने हमारी फरमाइश का गीत सुनाया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा गीत पसंद करके सभी दोस्तों ने फीडबैक दिए, उन सबको हम धन्यवाद देते हैं। इंदौरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख।
0: ओके जी बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और यानी पीपुरा लिखते हैं कि ये इश्क है क्या एक रोग बोरा, नंबर वन सॉन्ग सुनने को मिला है, मजा आ गया है। आरिफ जी क्या कहते हैं?
4: अशोक देशमुख जी, सर्वेश भगत जी, आत्माराम पाटिल जी, तीनों दोस्तों की फरमाइश बहुत ही शानदार, सुनवाने के लिए शुक्रिया। और आरजे अमन सर जी आपने प्ले करके आए हम तक पहुँचाए, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। मैं आरिफ सिंधी तमिलनाडु चेन्नई से, सुनते रहो रेडियो
0: हॉट स्टार जो दीवाना बना, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे बाबूलाल अंजाना जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और यहाँ गजानंद जी संगानी, अशोक देशमुख जी, सरोज भगत जी, आत्माराम जी के पसंद शानदार लगी है। और अमीना इब्राहिम जी थे, वाओ कितना खूबसूरत गाने के लिए धन्यवाद देते हैं हम। और ये फीडबैक सुन लेते हैं क्या कहते हैं
5: जी। ये भी गाना बहुत प्यारा लगा, ये इश्क है क्या, तो सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। एमडी फैज आलम हैदराबाद से।
0: और संजय पटेल जी देखते बहुत ही प्यारा सॉन्ग, लाजवाब सॉन्ग है। और काजल झका जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और फिलहाल यहाँ पे सोनू गौतम जी लिखते हैं कि रेस्पेक्टेड हमारे सभी दोस्तों की डिमांड शानदार लगी, सभी को थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और अक्षर सिंह सैनी जी लिखते हैं कि ये तीनों दोस्तों की डिमांड बहुत ही लाजवाब लगी और तीनों को धन्यवाद देते हैं। शिल्पा बेन लिखते हैं कि ये किसी को दिल नहीं देना वाला गाना बहुत ही बढ़िया लगा है। और राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि शानदार डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। और अमीना दीदी लिखती हैं कि यानी यहाँ पे तड़प क्या होती है हमसे पूछो, और नंबर नंबर होते हुए भी बात नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन होते हुए भी मैसेज नहीं कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा दर्द तो उस समय होता है जब इंसान याद करता है, लेकिन हर अब ये मैं आपने क्या लिखा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, भटक ही जाता है। ओके जी फिलहाल मैं तो यही कहने वाला हूँ आपकी इस यानी की लाइनों पर कि ज़िंदगी में बहुत से लोग मिलते हैं और कुछ तो यानी साथ चलते हैं और कुछ रास्ते में ही छूट जाते हैं, लेकिन यानी कोई एक ऐसा भी होता है जिसके जाने के बाद भी उसकी यादें हमेशा साथ चलती रहती हैं। वो इंसान यानी कि सामने से नहीं होता है और फिर भी उसकी बातें याद आती हैं, उसकी हंसी सुनाई देती हैं, और कभी कभी तो यूं लगता है कि जैसे दिल आज भी उसी का इंतज़ार कर रहा हो। शायद इसी एहसास का नाम मोहब्बत है। मोहब्बत में ज़रूरी नहीं कि हर कहानी पूरी हो, और कुछ कहानियाँ अधूरी होकर भी दिल में हमेशा के लिए वो पूरी होती हैं। तो आज अगर आपके दिल में अगर किसी का नाम चुपचाप बसा हुआ है तो गीत उनके नाम ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं अगला गाना जो प्ले करने वाला हूँ वो हमारे गजानन सरकार जी का और मिसाल अंगा जी का और उनके यानी कि गुरु का डिमांड है। तो सुना चाहते हैं बहुत ही प्यारा गाना और ऐसी दीवानगी, तो एंजॉय कीजिए इस गाने को, दीवाना का लाजवाब गाना।

0: जी, यानी मेरा नाम तो भाई दीवाना है ही, और फिलहाल मेरे पास बहुत सारे फीडबैक भी आ चुके हैं। निशान साहब लिखते हैं कि गाना बहुत ही शानदार लगा है, और फीडबैक सुनते हैं। निशान लंगा जी क्या कहते हैं?
1: नमस्कार अमन सर, मैं मिसाल अंगद, और अभी जो गाना आपने सुनवाया गोपी किशन फिल्म का, जो सर्वेश भगत और अशोक पाटिल जी का गाना था, तो मैं सर्वेश भगत जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, उनके गाने में मुझे याद किया। और अमन सर जी, आज के थीम के जो शब्द है, सभी शब्द लाजवाब है, और मैंने भी मेरा गाना इस थीम पर आपको भेज दिया है। अमन सर जी, आज के गाने सभी बहुत अच्छे अभी तक सुनने को मिले हैं, धन्यवाद।
0: ओके, और मैं बता दूं कि आज के जो थीम है वो इन महक जी ने दिया हुआ है, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा मैं। थैंक यू महक जी इतना प्यारा प्यारा थीम देने के लिए। और आरिफ सिंधी जी लिखते हैं कि गजानन जी के ग्रुप की डिमांड शानदार लगी है, बहुत बहुत शुक्रिया उनको। और पीकू राय लिखते हैं कि ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं, सुपर सुपर सुपर सॉन्ग चल रहा है, मजा आ गया सुन के। सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं?
2: अरजी अमन सर जी, मिसाल अंगद जी और गजानन सोलकर जी का पूरा भाई, ग्रुप का भाई, सभी भाई अपने गाने में शामिल किए हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ अशोक दशमुख जी लिखते हैं कि गजानन जी के ग्रुप की डिमांड सुपर हिट लाजवाब लगी है, उनको बहुत शुक्रिया। और यहाँ प्रियंका जी क्या कहती है? बोलिए प्रियंका जी।

0: रख दिया। बहुत ही सुंदर सॉन्ग है, थैंक यू।
1: वेलकम जी आपका। और यहाँ पे मीना जी देते हैं, वाओ वाओ वाओ, कितना खूबसूरत शानदार गीत है, थैंक यू सो मच। बाबूलाल जी लिखते हैं कि हमें दोस्त गजानन सुरकार जी की डिमांड शानदार लगी है। और सुनो गौतम जी,
2: तूने पहली

0: बहुत थैंक यू
1: अमन जी, वेलकम है आपका भी। और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
2: वाओ, सुपर सॉन्ग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारा गाना एमडी फैज आलम।
1: ओके जी, और यहाँ पे विष्णु जी लिखते हैं कि ये भी गाना मुझे बहुत ही प्यार लगा है। और फूल अब संजू भाव जी।
3: अमन सर जी, सबसे पहले मैं आपसे सॉरी बोलूंगा और क्षमा चाहूंगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं आपसे नहीं जुड़ पा रहा हूँ सर, क्योंकि सर मेरी जो मंझली बिटिया है सर मान्यता जी, इनकी तबीयत बहुत खराब होने की वजह से उनको हमने पिछले 20 दिनों से हॉस्पिटलाइज किया है सर, क्योंकि उनके पेट में इन्फेक्शन होने की वजह से बहुत तेज दर्द होता है सर उनके पेट में। डॉक्टर साहब ने उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है सर, और उन पर इलाज चल रहा है सर, इसलिए सर मैं पूरा डिस्टर्ब था तो मैं आपसे नहीं जुड़ पा रहा हूँ सर। और आप भी सर दुआ कीजिए कि हमारी मंझली बिटिया मान्यता जी, इनकी तबीयत में जल्द से जल्द सुधार आ जाए और वो अच्छा महसूस करे सर। और पूरा सर मेरा परिवार डिस्टर्ब हो चुका है सर इस वजह से, और खर्चा बहुत आ चुका है सर, तो सर इसलिए आपसे नहीं जुड़ पा रहा हूँ सर, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। और अभी आपने जो हमारी ग्रुप फरमाइश चलाई सर, तो उसके लिए आपको मैं शुक्रिया बोलूँगा। आपने हमारे ग्रुप फरमाइश को चलाया और हमारे ग्रुप फरमाइश को अपने कार्यक्रम में जगह दी। थैंक यू सो मच सर। मैं फुले भक्त संजू भाऊ, रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे, अमन जी के साथ।
1: धन्यवाद। ओके जी, और यहाँ पे का जनन जी लिखते हैं अदानी अमन जी को प्यार भर नमस्कार है, गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। शिल्पा जी लिखते हैं कि ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं, बहुत ही लाजवाब गाना सुनने को मिला। दत्तक कदम जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और अमीना दीदी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, दीवाना मूवी का मजा आ गया सुन के। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि रेस्पेक्टेड दोस्त राजन सरकार जी की पसंद, विशाल अंगद जी की पसंद और फुलेवा संजू भाव जी की पसंद अच्छी लगी है। एमडी फैज जी लिखते हैं कि गाना बहुत लाजवाब है, दिल से शुक्रिया धन्यवाद देते हैं। और कुंता बिनी जी जुड़ चुके हैं दिल्ली से, बहुत बहुत वेलकम है। अगला जो डिमांड है हमारे प्रमोद कुमार आगरा वाले का है, मैं सुनवा रहा हूँ, इंजॉय कीजिए इनके गाने को।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बनाते बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं। और पहले तो ये क्या कहते
1: हैं, हेलो अमन सर, मैं फिर एक बार मिसाल अंगद, और अभी जो आपने आदरणीय गजानन सालोकर जी, और मेरा भी इस गाना मैंने भी आपको भेज दिया था, तो अमन सर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फूले भक्त संजीव भाऊ का फीडबैक मैंने सुना, तो मैं हमारे मिसाल परिवार की ओर से पूरी दुआ करूंगा कि उनकी बेटियां बहुत जल्द और बहुत जल्द ठीक हो जाए, और रेडियो हॉटस्टार से फिर एक बार फूले भक्त संजीव भाऊ जुड़े। तो अमन सर जी, मैं सोनू गौतम जी का, सर्वेश भगत जी का और जितने भी दोस्तों ने फीडबैक दिया है इस गाने को, मैं सभी का दिल से धन्यवाद दूंगा। और अमन सर जी, आज जिस प्रकार आप गाने सुनवा रहे हैं, वाकई मन बहुत प्रसन्न हो रहा है। मैं मिसाल अंगद, बीड, महाराष्ट्र।
0: धन्यवाद देते हैं आपको भी। और यहाँ पे फैज जी क्या कहते हैं?
2: जी बिल्कुल, तेरे प्यार में पागल हो गए हम। अमन जी तो है ही ऐसे, साथ में रेडियो हॉट स्टार भी है जो और दीवाना बना देता है। तो सुनते रहिए और मजे लेते रहिए। एमडी फैज आलम हैदराबाद से।
0: ओके जी, और यहाँ पे गजानन जी लिखते हैं कि हमारे प्रमोद जी की पसंद बहुत बेहतरीन लगी है, उनको धन्यवाद देते हैं इस दिन ने प्यारे गाने के लिए। और मीना जी लिखते हैं, वाह प्रमोद जी बहुत ही प्यारा गाना सुनाया आपने। और कुंता जी लिखते हैं कि गजानन सरकार जी ग्रुप और प्रमोद जी की पसंद बहुत ही खूबसूरत लगी है, धन्यवाद देते हैं। और ये फीडबैक सुनते हैं आवाज़ की मलका अर्जी रत्ना जी का। क्या हुआ?
3: हेलो नमस्ते एंड गुड इवनिंग आरजे अमन सर जी, और रेडियो हॉट स्टार के सभी दोस्तों को भी आरजे रत्ना का प्यार भरा नमस्कार। ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं, सच में ऐसी शाम और ऐसा दिन भी हमने कभी देखा नहीं है। शाम की इस खूबसूरत महफिल में आज बात उन खास लोगों की, जिनकी उम्र भले ही जिंदगी के कई पड़ाव पार कर चुकी हो, लेकिन जिनकी मुस्कुराहट में आज भी वही अपनापन है, जिनकी बातों में जिंदगी का अनुभव है और जिनके आशीर्वाद में अपनों के लिए ढेर सारी खुशियां छुपी है। आज वरिष्ठ नागरिक दिवस के मौके पर रेडियो हॉटस्टार से जुड़े मेरे उन तमाम प्यारे वरिष्ठ श्रोताओं को दिल से नमन और ढेर सारी शुभकामनाएं। और कहते हैं ना, उम्र सिर्फ सालों का हिसाब नहीं होती, जिंदगी के खूबसूरत अनुभवों की किताब भी होती है। आप हमारे लिए सिर्फ उम्र में बड़े नहीं है, बल्कि आपके अनुभव, आपकी बातें, आपकी यादें और आपका आशीर्वाद हमारी जिंदगी की वो पूंजी है जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। और रेडियो हॉटस्टार से जुड़े हमारे वरिष्ठ श्रोताओं से तो मेरा एक खास रिश्ता है। आपकी फरमाइशें, आपकी आवाज़ और आपका प्यार हमेशा इस रेडियो की खूबसूरत पहचान बनी रहे। और दो पंक्तियाँ आपके नाम, वक्त की धूप में सो जाए बनकर साथ रहे, वक्त की धूप में जो साए बनकर साथ रहे, हर मुश्किल में जो हमारे लिए विश्वास रहे। उम्र बढ़ी तो क्या हुआ, दिल वही जवां है, हमेशा खुश रहे आप, बस यही अरमान रहे, बस यही अरमान रहे। आप सभी वरिष्ठ जनों को आरजे रत्ना की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपका हर दिन खुशियों से भरा हो, सेहत आपका साथ दे, अपनों का प्यार हमेशा आपके आसपास रहे और आपके चेहरे की ये प्यारी सी मुस्कान यूं ही बनी रहे।

के लिए थोड़ा सा प्यार है, थोड़ी सी चाहत है, थोड़ी सी मोहब्बत है, या कोई ऐसा है जिसे सोचकर दिल वो मुस्कुरा देता है, तो आज का हर गीत उस खास इंसान के नाम कर दीजिए, क्योंकि आप सुन रहे हैं रेडियो हॉटस्टार अमन के साथ जो आपको दीवाना बना दे। तो चलिए इसी मोहब्बत भरी शाम में एक और हम नगमा आप सबके नाम करते हैं, जिसे लेके आए हुए सोनू गौतम जी, और ये सुनवाना चाहते हैं अमन जी आपको, आरजे वंशिका जी को, और स्पेशली डेडिकेट है प्रीति रायदास जी को, एम ताहिर जी को, सुनील कुमार जी को, और यानी के हमारे यानी प्रिंस पासवान जी हैं, और ये प्रियंका जी हैं, और पूजा भास्कर जी, कुंता बेनी जी हैं, और कायनात जी हैं, और जितने भी लाइव सुन रहे हैं दोस्त, सभी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो सुनवा रहा हूँ, इंजॉय कीजिए। और ये गाना माय गॉड बहुत प्यारा है, क्योंकि मोहब्बत से ज़्यादा मोहब्बत है तुमसे ये।

0: वेलकम बैक और रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे और बहुत सारे फीडबैक है और ओके जी। और यहाँ पे गजानन जी लिखते हैं कि आदरणीय आर्य रत्ना जी का फीडबैक मुझे अच्छा लगा है, उनको धन्यवाद देते हैं। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि सोनू गौतम जी की डिमांड बहुत ही प्यारी है, उनको धन्यवाद। और ये फीडबैक,
1: वाह क्या पसंद है, क्या गाना है, दिल को सुकून देने वाला ये सब गाने हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। आज का प्रोग्राम भी बहुत ज़बरदस्त और रोज़ ही ज़बरदस्त होता है, तो सुनते रहिए और दिल बहलाते रहिए आरजे अमन जी के साथ रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे। एमडी
0: थैंक यू सो मच एमडी फैज भाई। और यहाँ प्यारे सिंधु जी लिखते हैं कि भाई सोनू गौतम जी के पसंद बहुत शानदार लगी है उसको, और शुक्रिया सुनवाने के लिए इतना प्यारा गाने को। और हमें सरोज भगत जी क्या कहते हैं, इनके सुनते हैं।
2: आरजे अमन सर जी, सोनू गौतम जी और सभी भाई और सभी बहन अपने अपने गाने में शामिल किए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका। और एम ताहिर जी लिखते हैं कि सोनू गौतम जी का यह नगमा मोहब्बत से ज़्यादा दिल के बेहद करीब और रूह को छू लेने वाला है, जिसने शो के माहौल को और भी दिलकश बना दिया है। उनकी ऐसी नायाब और उम्दा पसंद की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और इन पूजा भास्कर जी लिखते हैं कि मेरा गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और सभी दोस्तों का भी थैंक यू सो मच। मीना जी लिखते हैं कि वाओ लाजवाब डिमांड। और राधा कृष्ण गौर लिखते हैं बहुत ही शानदार डिमांड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ हमारे साहिब हुसैन जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और लिखते हैं कि मोहब्बत से ज़्यादा गाना मुझे अच्छा लगा। शिल्पा बेन लिखते हैं कि मोहब्बत से ज़्यादा वाला गाना सुपर एक्सीलेंट है, थैंक यू सो मच। और गजानन जी लिखते हैं कि सोनू गौतम जी की पसंद मुझे बेहतरीन लगी है, उनको भी धन्यवाद देते हैं। और जुड़ चुके हैं हमसे यानी विलास निकम सर जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और कुंता बेन जी लिखते हैं कि शानदार डिमांड के लिए थैंक यू सो मच सोनू गौतम जी आपका। और ये फीडबैक सुन लेते हैं सोनू गौतम जी का।
3: प्यार कितना है इस भोलेपन से,

0: थैंक यू अमन भाई इतना अच्छा गाना सुनवाने के लिए और मेरा गाना चलाने के लिए, दिल से शुक्रिया।
1: अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ रंजीत कुमार जी का, सुनना चाहते हैं फिल्म इन कसूर का ये बहुत ही प्यारा नगमा जिसका नाम है जिंदगी बन गए हो तुम। बिल्कुल जिंदगी बन गए हो तुम।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे और बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आए हुए हैं और यहाँ पे गजानंद जी की जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे जिंदगी बन गए तुम। थैंक यू सो मच रंजीत कुमार जी इतना प्यारा गाना सुनाने के लिए और ये फीडबैक सुनते हैं।
1: अमन सर जी साथी सोनू गौतम जी की पसंद और बैक टू बैक पूजा भास्कर जी इनका भी गीत बहुत पसंद आया सर। शुक्रिया दोनों भाई बहन को। मैं आत्माराम पाटिल। थैंक
0: यू। ओके जी और यहाँ पे एम डी फाइव जी क्या कहते हैं।
2: जी बिल्कुल सुपर्ब डिमांड जिंदगी बन गए हो तुम। बहुत बढ़िया गाना एकदम मज़ा आ रहा है दिल को सुकून मिल रहा है तो सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे आरजे अमन जी के साथ एम बी फैज आलम हैदराबाद से।
0: ओके जी धन्यवाद देते हैं आपका भी और मीना जी वाओ वाओ बहुत ही खूबसूरत डिमांड थैंक यू सो मच इस गाने के लिए भी और मनीषा जी लिखते हैं कि बेहतरीन गाना है जी थैंक यू सो मच और शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि ओके सुपर एक और सुपर एक्सीलेंट गाने के लिए धन्यवाद देते हैं बहुत ही बढ़िया पसंद है और प्रियंका जी क्या कहती है।
3: जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे
0: अच्छा
3: वो खुश।

0: बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, थैंक यू।
1: वेलकम जी आपका, और यहाँ पे राधा कृष्ण को भी लाजवाब डिमांड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे लिखती है इन पूजा भास्कर जी की, जिनकी प्यार भी पानी की उन बूंदों ही जैसा है, जो हथेली पर वो ठहरते हुए बहुत अपने लगते हैं, लेकिन जरा सी गर्मी मिलने तो चुपचाप फिसल जाते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं बस कुछ यादें और एक खाली हथेली। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और तो मैं भी कुछ कहूँगा, लेकिन गाना प्ले करने से पहले फिलहाल ये फीडबैक सुनते हैं क्या कहते हैं। जिस्म से

0: थैंक यू अमन भाई इतना अच्छा सॉन्ग प्ले करने के लिए, और दिल से शुक्रिया है उन भाइयों का जिन्होंने ये गाना सुनवाया है। थैंक यू अमन भाई।
1: ओके जी, और यहाँ पे साहिब हुसैन जी लिखते हैं कि अमन जी आज तो दिल चिर के रख दीजिएगा, सभी गाने बेस्ट चल रहे हैं। अच्छा ऐसा है क्या। और रंजीत कुमार लिखते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया अमन सर जी मेरा गाना प्ले करने के लिए, और दोस्तों को भी धन्यवाद देते हैं। और संध्या पटेल जी लिखते हैं कि बहुत ही औसम सॉन्ग चल रहा है जी। और संध्या पटेल जी अगला जो गाना भोजपुरी वाला आना है, मतलब आने वाला है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही बेस्ट है, मतलब यानी कि वन ऑफ द माई मतलब यानी फेवरेट सॉन्ग में से एक है। और यहाँ पे यानी प्रमोद कुमार लिखते हैं कि बहुत बेहतरीन डिमांड है। ओके जी, और शेर सिंह सैनी जी लिखते हैं कि अमन सर जी बहुत ही प्यारे प्यारे गाने चल रहे हैं आज, बहुत बहुत मतलब अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। हमें नंदनी माँ भी लिखते हैं कि गाने बहुत ही प्यारे प्यारे हैं आज के जी। अगला जो डिमांड है वो है फिल्म यानी कि ससुरा बड़ा पैसा वाला से लेकर आई हुई है काजल झक्का जी, और सुनाना चाहती है सभी दोस्तों को। तो काजल झक्का जी थैंक यू सो मच इस गाने के लिए, इंजॉय कीजिए।

लाइन आ रहा बानू बहुते प्यारा बा के फोटो तहार लेके सुतीले सुधाने, मतलब आपका फोटो मैं अपने यानी के सिरहाने यानी के तकिए के नीचे दबा के सोता हूँ, जैसे यानी फोन में है ना, इसीलिए।

0: वेलकम बैक और रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। और यहाँ पे अकबर खान जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका अकबर खान जी। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं?
1: जय अमंग सर जी, काजल झा जी अपने गाने में शामिल किए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे मनीषा शर्मा जी लेते हैं कि आज की थीम इतनी प्यारी अमन जी के गाने तो बेस्ट बजे नहीं है। जी जी जी जी वही, थैंक यू महक जी का एक बार फिर से। और प्रियंका जी क्या कहते हैं?
2: अमन जी सभी सॉन्ग बहुत ही प्यारे हैं, जो थीम है प्यार दिल धड़कन उस पे एक सॉन्ग याद आ गया है। अच्छा। जो कि ये है, प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। अचानक से माइंड में ये सॉन्ग आया तो हमने गुनगुना दिया।
0: अरे
2: शुक्रिया।
0: क्यों अचानक से आया आपको ये गाना ओल्ड इज गोल्ड में? क्यों पहुंचा दिया आपने मुझे ओल्ड इज गोल्ड में, हैं बताइए, कोई बात हुई? ये फीडबैक।
3: वाह काजल जी की पसंद उनके नाम की तरह ही झकास, एकदम मजा आ गया भोजपुरी गाना में, बहुत बहुत धन्यवाद उनको, MD फैज आलम हैदराबाद से।
0: ओके जी। और यहाँ पे साहब जी लिखते हैं कि काजल जी की पसंद, वो कहते हैं कि काजल जहाँ लग जाती है खूबसूरती बढ़ जाती है, उसी तरह आज इस यानी कि सॉन्ग ने हॉट स्टार में और भी खूबसूरती बढ़ा दिया। थैंक यू सो मच बाबूलाल जी, इतने की काजल जी के पसंद बहुत ही शानदार डिमांड थी। और राधा कृष्ण को भी इतने के भोजपुरी गाना ने तो दिल खुश कर दिया। थैंक यू सो मच काजल झक्का जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद कुमार इतने के काजल जी की पसंद औसम लगी है। और अगला जो डिमांड है मैं यानी कि डिंपी जी का प्ले करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहने वाला हूँ। जैसे कि इश्क की भी एक अपनी कहानी है दोस्तों, यानी कि कभी किसी की आंखों से शुरू होता है और कभी किसी की बातों से, और कभी एक मुलाकात दिल में जगह बना लेती है, और कभी बिना मिले ही वो किसी से मोहब्बत हो जाती है। और इन प्यार में तो कोई हिसाब नहीं होता है और कोई वजह भी नहीं होती है कि बस एक शख्स होता है और उसके साथ वो जुड़ी होती है हजारों खूबसूरत भावनाएं। और चाहत ये नहीं कि वो हर पल हमारे पास रहे, और चाहत तो बस इतनी सी है कि जब वो हमें

बिल्कुल मोहब्बत इनायत करम देखते हैं और बहुत सारे फीडबैक आ चुके हैं। प्रमोद कुमार लिखते हैं कि यानी कि तू है तो हर पल जन्नत सा लगता है और तेरे बिना दिल बहुत इंतहा सा लगता है और तेरी मुस्कान में सारा जहां है मेरा और तू ही मोहब्बत तू ही ख्वाब लगता है। अय है क्या बात है भाई प्रमोद जी। और हमें बाबूलाल जी लिखते हैं कि डिम्पू जी की डिमांड बहुत ही प्यारी है और एम ताहिर जी लिखते हैं कि धड़कने को बेकाबू कर देने वाला ये नगमा है। जी सही कहा आपने। और ये फिर

0: थैंक यू अमन भाई, इतना अच्छा सॉन्ग सुनवाने के लिए दिल से शुक्रिया।
1: वेलकम जी आपका भी, और यहाँ पे गजानंद जी मोहब्बत इनायत करम देखते हैं, बेहतरीन लाजवाब गाना सुनने को मिला, मजा आ गया एकदम। और ये फीडबैक सुनते हैं।
2: वाह, ये भी गाना प्यारा लगा, बहुत अच्छा, दिल को सुकून देने वाला था। बहुत बहुत धन्यवाद एमडी फैज आलम।
1: ओके जी, एमडी फैज जी और राधा कृष्ण को भी इस खूबसूरत डिमांड के लिए थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद। और मनीषा जी लिखते वेरी वेरी वेरी नाइस सॉन्ग, काजल झका जी कहते
3: नजराना मोहब्बत का महबूब को क्या दूँ, नजराना मोहब्बत का महबूब को क्या दूँ, जो खुद बेशकीमती है मेरे लिए, जो खुद बेशकीमती है मेरे लिए, मैं उसे क्या दूँ, मैं उसे क्या दूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू अमन जी गाना बजा देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, सभी दोस्तों को भी बहुत बहुत शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। मैं काजल सीतामढ़ी से।
1: ओके जी, और यहाँ पे कुंता भी ने लिखते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। और यहाँ पे शिल्पा बेन जी लिखते हैं कि ये तुम्हें कितनी चाहत से हम देखते हैं, सुपर एक्सीलेंट सॉन्ग है। और विष्णु जी लिखते हैं कि अमन जी बहुत ही प्यारा गाना है, धन्यवाद देते हैं। अगला जो डिमांड है वो खुशबू जी का है और सुनना चाहती हैं जान से बढ़कर जानम तुम।

खुशबू जी की डिमांड बहुत ही प्यारी है और शिल्पा पेंचल जी ने जान से अपना गाना बहुत ही लाजवाब गाने के लिए थैंक यू सो मच खुशबू। राहुल पासे जी लिखते हैं कि हम भी जुड़ गए हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और विष्णु जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है जी, थोड़ा और इन्जॉय कीजिए गाने।

0: बिल्कुल करते हैं। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो मैं सिलेक्ट करूंगा, लेकिन इस फीडबैक के बाद।
1: तुम ही पा लिया है तो खोने

0: बहुत ही प्यारा सॉन्ग था।
1: ओके, अगला जो डिमांड है हमारे राधा कृष्ण गोप जी का है, और ये सुनना चाहते हैं कि दिल तेरे नाम से धड़कता है। बिल्कुल

और यहाँ पे यानी कि मनीषा जी का मैसेज आया हुआ कि ये जो गाना यानी चल रहा था यानी खुशबू जी का, वो आज के सॉन्ग ऑफ द डे का यानी विनर बनने के लायक है। तो ठीक है, आपकी बात का सम्मान करते हुए यानी खुशबू जी को आज के सॉन्ग के विनर बनाया जाता है। बहुत बहुत बधाई, और खुशबू एक गाना और सुन सकती हैं आप।

0: और यानी कि प्यार की वो सबसे खूबसूरत बात यानी पता है दोस्तों, यानी कि प्यार में हमेशा कुछ यानी कहने की जरूरत नहीं होती है, और यानी कभी इन सामने वाला भी बस इतना पूछ दे कि इन कैसे हो, और दिल कहता है बस अच्छा हूँ। यानी कि कभी एक छोटी सी मुस्कान, तो यानी कि कभी इन बिना वजह इन किया गया फोन, या कभी अचानक आया हुआ एक मैसेज, और कभी बस इन चुपचाप बैठे रहना, ये छोटी छोटी बातें मोहब्बत को इतना खास बना देती है, क्योंकि वो सच्ची चाहत में वो बड़ी ख्वाहिश नहीं होती है दोस्तों, बस एक इंसान होता है जिसकी खुशी देखकर हमारा दिल खुद ब खुद खुश हो जाता है, और जो जो अपने उस यानी खास उस यानी के शख्स को दिल से आप ही कीजिए याद, और अगर आपके पास कुछ है तो एक बार मुस्कुरा दीजिए और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार, जो दीवाना बना दे उनके लिए गाना तो डेडिकेट कर ही सकते हैं। फिर है मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं, कुंता जी लिखते हैं कि शानदार डिमांड के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं, और दाता जी लिखते हैं कि राधा कृष्ण गोप जी की डिमांड सुपर हिट लगी है, और क्या नाम इनका जानिशार अख्तर जी लिखते हैं कि वाओ बहुत ही प्यारा गाना है, नाइस सॉन्ग है, और शिल्पा बेन जी लिखते हैं कि दिल तेरे नाम से धड़कता है, गाना बहुत ही बढ़िया है, और राधा कृष्ण गोप जी लिखते हैं अमन जी धन्यवाद मेरा गाना बजाने के लिए, गजानंद जी लिखते हैं कि दिल तेरे नाम से धड़कता है गीत बहुत ही शानदार लगा है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए, दीपक कुमार गायकवाड जी लिखते हैं कि दिल तेरे नाम से धड़कता है गाना बहुत ही शानदार है, राहुल पासी जी लिखते हैं कि दिल तेरे नाम से धड़कता है गाना बहुत ही शानदार लगा है, बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने के लिए, और ये फिर मैं
1: आज के सभी सॉन्ग सुपर डुपर, इतने अच्छे गाने सुनाने के लिए थैंक यू सो मच।
0: ओके जी, अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो यानी विष्णु चंद्र जी का है, ये सुना चाहते हैं कि चाहत ना होती तो कुछ भी ना होता, बिल्कुल चाहत ना होती तो कुछ भी ना होता, और इस गाने की जो स्टार्टिंग की जो लाइन है ना बहुत ही प्यारी है, वैसे गाना भी बहुत अच्छा है।

न होती कुछ भी न होता कुछ भी न होता कुछ भी न होता। दत्ता जी लिखेंगे, विष्णु चंद्र जी आपका गाना बहुत अच्छा लगा है। और सुनो दत्ता जी लिखेंगे, चाहत न होती कुछ भी न होता, लाजवाब सॉन्ग है, अलका याग्निक और विनोद राठौर की आवाज में, मजा आ गया सुन के। और बाबूलाल जी लिखेंगे, विष्णु चंद्र जी के पसंद शानदार लगी है। और कुंता भी लिखते हैं कि ऑसम सॉन्ग है, थैंक यू सो मच। और जानिशा अख्तर जी लिखते हैं कि वाह क्या गाना है। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं, बहुत ही लाजवाब गाने के लिए धन्यवाद देते हैं। और विष्णु जी लिखते हैं, अमन जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा गाना।

अगला जो डिमांड है हमारे आशुतोष पाल जी का है और सुनना चाहते हैं कि मैंने तुमसे प्यार किया है, इसमें मेरी खता नहीं, बिल्कुल कोई खता नहीं है, एंजॉय कीजिए। ओ मैंने गलत गाना प्ले कर दिया है, आई एम सॉरी।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार, जो आपको दीवाना बना दे और नींद नहीं देते। वाओ क्या गाना है, बहुत ही प्यारा गाने के लिए धन्यवाद देते हैं। और ये फिर से
1: तेरी हर एक बात और हर एक मुस्कान लाजवाब है, तेरी हर एक बात हर एक मुस्कान लाजवाब है, तेरा होना ही मेरी जिंदगी में एक सबसे हसीन ख्वाब है।
0: वाह वाह वाह वाह, क्या बात कही आपने। तो मैं भी तो यही कहूँगा कि मतलब यानी कि कभी कभी मैं सोचता हूँ दोस्तों कि आखिर मोहब्बत क्या होती है, और शायद यानी कि शायद वो यानी कि किसी का वो बिना वजह अचानक से मेरे दिमाग में उनका नाम याद आ जाना, या शायद वो किसी की आवाज़ को सुनते ही मेरा दिल का जोर से मुस्कुरा देना, या फिर भीड़ में भी बस एक चेहरा को ढूंढते रहना। इश्क शायद वही है जहाँ की वो खुशी हमारी अपनी खुशी बन जाती है, और जहाँ उसका एक छोटी सी परेशानी हमें बेचैन कर देती है, उसकी एक इन प्यारी सी मुस्कान हमारा पूरा दिन बना देती है। और प्यार में इन मंजिल में खूबसूरत वो सफ़र होता है जिसमें हर मोड़ पर उस इंसान की याद साथ चलती है। तो आज इस खूबसूरत शाम में मतलब आप सुन रहे हैं एक से बढ़कर एक इन नगमे मेरे साथ, मैं हूँ आपका दोस्त अमन, और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं। और ओके और यहाँ पे गजन अंजलि लिखते हैं कि मैंने तुझसे प्यार किया हुआ है, इसने मेरी खतानी मोहम्मद अजीज और अनुराधा पटवाल की आवाज़ में लाजवाब गीत फिल्म ये सूर्या का सुनने को मिला, मज़ा आ गया है। राधा कृष्ण को लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन डिमांड के लिए धन्यवाद देते हैं, और ये सुनते हैं क्या कहती हैं प्रियंका जी।

0: थैंक यू, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है ये।
1: ओके जी, और हमें हमारे प्रमोद जी लिखते हैं कि लाजवाब डिमांड के लिए धन्यवाद देते हैं, मजा आ गया सुन के। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि मैंने तुझसे प्यार किया है, बहुत ही प्यारा गाना है। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि मैंने तुझसे प्यार किया, बहुत बहुत बहुत लाजवाब गाना है, मजा आ गया इस गाने को सुनकर। और विष्णु जी लिखते हैं कि जी अमन जी बहुत खूबसूरत गाने के लिए धन्यवाद देते हैं। अगला जो डिमांड है वो हमारे शाहिद अंसारी जी का है और सुनना चाहते हैं ये गाना, इंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक। और यहाँ पे कुंदा जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाने के लिए धन्यवाद देते हैं। और दत्ता जी लिखते हैं कि शायद ये गाना मुझे अच्छा लगा है। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि यानी कि तू पास है तो हर मौसम हंसी लगता है और तेरे बिना हर दिन सुना सुना लगता है और तेरे इश्क ने मुझे बदल दिया है, अब तो तू सिर्फ मेरे लिए दिल के करीब लगता है। अगला डिमांड MD5 जी का।
1: अस्सलामु अलैकुम भाई यार। तो आज थीम चॉइस में थीम है दिल, दिल से ये गाना है धक धक धड़के दिल ये मेरा। तो इस गाने में शामिल कर रहे हैं सबसे पहले आपको और आपके सपनों की रानी सुंदरता की मुरत जी को और रेडियो हॉट स्टार एंड गाना के सभी साथी को। तो सुनवा दीजिए MD फैज आलम हैदराबाद से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

0: बिल्कुल धक धक दिल, ये मेरा वैसे फीडबैक आ चुका है। राहुल जी लिखते हैं कि ये गाना मुझे अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और सरोजी सर जी लिखते हैं कि आज का कार्यक्रम शानदार चल रहा है जी, बिल्कुल। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि मैं कुछ कहूँगी इसके बारे में, मैं नजर न आऊं तो तुम बेचैन हो जाओ, बस ऐसा इश्क होना चाहिए जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि एमडी फैज आलम जी की डिमांड लाजवाब जी, और ये फिर
1: अमन भैया आपका जो आज का प्रोग्राम चल रहा है वो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं लाव्या के वोट सोनी मालवा से।
0: ओके जी, धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पे गजानंद जी लिखते हैं कि एमडी फैज जी के पसंद में बहुत ही शानदार लगा है, धन्यवाद। इसी बात पर जो डिमांड है जाकिर खान जी का मैं प्ले करने वाला हूँ, एंजॉय कीजिए जाकिर खान जी।

बिल्कुल यहाँ पे बाबूलाल जी लिखते हैं कि MD5 जी के पसंद मुझे पसंद आई है, धन्यवाद देते हैं। अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि ये जाकिर जी की डिमांड शानदार लगी है, और गजन जी लिखते हैं कि जाकिर जी के पसंद बहुत अच्छी लगी। अगला जो डिमांड है MD यानी कि ताहिर जी का है, और ये सुनना चाहते हैं जिन दिल में उतर जाऊं, और ये लिखते अमन जी सबसे पहले आपको और आपकी सुंदरता की मुरा जी को डेडिकेट है। उसके बाद आरजे इन वंशिका जी स्पेशली डेडिकेट है उनके मैजिकल गर्ल यानी कैना जी को, और इन कुछ दोस्त जो शामिल रहेंगे वो हैं सोनू गौतम जी और सुनील कुमार जी बाकी बिहार वाले, और प्रिंस पासवान जी और शेर सिंह सैनी जी हैं, और जितने भी सुन रहे हैं साथी सभी के लिए गाना डेडिकेट करना चाहते हैं, तो सुनवा रहा हूँ, इंजॉय कीजिए सर जी।

मोहब्बत में सबसे खूबसूरत चीज वो किसी का मिलना नहीं बल्कि वो किसी के दिल में अपनी एक छोटी सी जगह बना लेना होता है। और यानी कि क्योंकि क्योंकि दुनिया में लोग तो बहुत मिलते हैं लेकिन यानी कोई ऐसा मिल जाए जिससे बात किए बिना दिन अधूरा लगे और जिसकी आवाज़ सुनकर दिल को सुकून मिले और जिसकी खुशी में हमारी अपनी खुशी छिपी हो। तो मेरे जनाब, दिल को आपका हम सफर मिल गया। तो यानी प्यार में ना बड़ी बड़ी वो कस्में चाहिए ना बहुत बहुत सारे वादे चाहिए, बस एक दूसरे की कदर और थोड़ी सी परवाह और दिल में सच्ची वो चाहत और मोहब्बत चाहिए। तो अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा खास इंसान है तो एक खूबसूरत गाना उसका नाम जरूर कीजिए और सुनकर ये रेडियो हॉट स्टार अमन के साथ जो आपको दीवाना बना दे। वैसे फीडबैक बहुत सारे मेरे पास आए हुए हैं, शामिल करता हूँ मैं। और यहाँ पे राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि लाजवाब डिमांड के लिए धन्यवाद देते हैं। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि हमारे दोस्त जाकिर जी के पसंद मुझे अच्छी लगी है, उनको शुक्रिया। और गजानंद जी लिखते हैं कि हमारे एम एन ताहिर जी के पसंद मुझे अच्छी लगी है, उनको धन्यवाद देते हैं। अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि एम ताहिर जी की पसंद बहुत ही प्यारा है, उनको बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। मनीषा जी लिखते हैं कि बेहतरीन सॉन्ग है एम ताहिर जी का। और कुंता जी लिखते हैं कि सभी दोस्तों का डिमांड सुपरहिट लग रहे, लाजवाब लग रही है, सभी को धन्यवाद देते हैं। और जाकिर जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले कर। अगला जो डिमांड है वो खुशबू जी का है क्योंकि खुशबू जी आज की बनी है यानी कि सॉन्ग ऑफ द डे के विनर। तो बहुत बहुत बधाई हो और इनका गाना मैं प्ले कर रहा हूँ, इंजॉय कीजिए। कर रहा है

0: बिल्कुल बहुत प्यारा गाने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर एक ही विनर नहीं होती तो इस गाने के लिए भी विनर जरूर हो जाती, क्योंकि एक बार विनर ऑलरेडी हो चुके हैं। और ये फिर
1: अमन जी भूल न जाना मेरा गाना अभी बजाना, भूल न जाना मेरा गाना अभी बजाना, याद है ना कि भूल गए।
0: अरे हम तो भूल ही गए हैं आपका गाना। वैसे अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि ये खुशबू जी की डिमांड बहुत ही प्यारी लगी है, उनको बहुत दिल से धन्यवाद है। मनीषा जी लिखते हैं कि सुपर वेरी वेरी नाइस सॉन्ग है खुशबू आपका। और मीना जी लिखते हैं वाह बहुत ही प्यारे डिमांड के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। अगला जो डिमांड है वो कुंता बिनी जी का है, सुनना चाहती है उम्मीद का गाना मुझे इश्क है तुझी से, मेरी जान जिंदगानी और तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। अमन जी आपको आपको समझाता है कि मुरत जी को और सभी सुनने वाले दोस्तों को डेडिकेट करना चाहती हैं, तो सुनवा रहा हूँ, इंजॉय कीजिए मुझे इश्क है तुझी से।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। और यहाँ पे राहुल पाजी की खुशबू जी की गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, उनको धन्यवाद देते हैं। और प्रमोद कुमारी जी की कुंता बेनी जी के पसंद बहुत शानदार लगी, उनको भी धन्यवाद। और जागृत जी की बहुत खूबसूरत ये पसंद है आपकी, कुंता बेनी जी मेरी जान जिंदगानी, मुझे इश्क है तुझी से, बहुत शानदार गाना, ओल्ड इज गोल्ड जिंदाबाद। और शिल्पा बहन जी देखिए मुझे इश्क है तुझी से, बहुत ही बढ़िया गाना है। और सरबजीत जी क्या कहते हैं सुन लेते हैं।

0: लाजवाब गीत और कार्यक्रम बहुत ही शानदार चल रहा है। तो सुनते रहे रेडियो हॉटस्टार, जो सबको दीवाना बना रहे। मैं सरवजीत सेठी फाजिल का पंजाब से।
1: ओके जी, और यहाँ पे अनिल नायक जी लिखते हैं कि

और यहाँ पे राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये दिल में दर्द सा जगह है, गाना मुझे बहुत ही प्यार लगा है। और अनिल नायक जी लिखते हैं कि भाई जितेंद्र जी की च्वाइस लाजवाब है। और कुंता बिरजी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी डिमांड के लिए थैंक यू सो मच जितेंद्र जी को।

वेलकम बैक और दाता जी रंगमन जी, धन्यवाद मेरा गाना लगाने के लिए। और अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ बाबूलाल अंजाना जी का, सुनना चाहते हैं धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। इंजॉय कीजिए गाने को, प्ले करिए।

0: दिल प्यार को बढ़ाना है और फिलहाल अगला यानी फीडबैक हमें सुनाना है, क्या कहते हैं रवि मड़े जी?
1: धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है।
2: बहुत ही सुपर लाजवाब सॉन्ग, सभी सॉन्ग एक से बढ़कर एक चल रहा है, मजा आ जा रहा है गाने सुनने में, क्या बात।
0: ओके जी, और यहाँ पे जाकर जी बाबूलाल अंजना जी की डिमांड बहुत लाजवाब लगी है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अजय भगत जी देते हैं सुपर डिमांड के लिए, थैंक यू सो मच। और दत्ता जी देखते हैं बाबूलाल जी का गाना मुझे सुपर लगा है, बाबूलाल जी देखते हैं धन्यवाद अमन सर जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। अगला जो डिमांड है दो दोस्तों की है, एक हमारे यन क्या नाम है, नाम है इनका यानी विलास निकम सर जी, और विलास निकम जी के साथ साथ शामिल हो रहे हैं राहुल पासी जी, दोनों की एक ही डिमांड है, हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, बिल्कुल अगर तुम

0: बिल्कुल नहीं मिलता। फिलहाल फीडबैक सुनिए।
1: धीरे धीरे रेडियो हॉट स्टार के परिवार को बढ़ाना है, लाखों में पहुंच जाना है, मेरी तो यही शुभकामनाएं हैं और उम्मीद है कि रेडियो हॉट स्टार के परिवार लाखों में हो जाएं। धन्यवाद। मैं दीपक गायकवाड़, सिवनी मालवा, मध्य प्रदेश से।
0: ओके जी, और गजानन श्री सिंह आदरणीय, इनकी कुत्ता भरत जी, बाबूलाल जी, सभी के पसंद बेहतर लगी, सभी को धन्यवाद देते हैं।

0: लाजवाब सॉन्ग, मजा आ गया भाई किशोर कुमार जी की आवाज सुन के।
1: ओके जी, और यहाँ पे विलास निकम सर जी लिखते हैं कि धन्यवाद अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। नंदनी मां लिखते हैं कि आज तो सभी गाने एक से बढ़कर एक गानों की बारिश हो रही है जी। थैंक यू सो मच। प्रमोद जी लिखते हैं लाजवाब डिमांड, थैंक यू सो मच। और मीना इब्राहिम लिखते हैं कि वाह लाजवाब पसंद है, बहुत मजा आया सुन के। अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ इनायत खान जी की, सुनना चाहती हैं दिल दिल दिल कोई शीशा तो नहीं, स्पेशली डेडिकेट है उनके शौहर को यानी उनके हस्बैंड जी को। तो एंजॉय कीजिए इस गाने को।

शीशा तो नहीं है। और राधा कृष्ण को कितने शानदार डिमांड करें, धन्यवाद। अगला जो डिमांड है वो यानी कि सिया जी का है, और सिया जी सुनना चाहती है रबाइश ना हो, स्पेशली डेडिकेट है उनके उनके लव जी को, ओके। और आपको भी मतलब मुझे भी डेडिकेट है, और सभी सुनने वाले को भी डेडिकेट है। थैंक यू सो मच सिया जी, इंजॉय कीजिए, रबाइश ना हो।

0: रब्बा इश्क ना होए वैसे गाना भी बहुत अच्छा लगा। और कुंदा जी लेते हैं कि अमन जी आज का प्रोग्राम मुझे बहुत ही प्यारा लगा है और गाने भी सभी बहुत ही शानदार लगे हैं और सभी दोस्तों को धन्यवाद देते हैं दिल से। ओके, और इनायत जी लिखते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया अमन सर जी गाना प्ले करने के लिए। और इनायत जी मैं तो आपसे यही कहूँगा कि यानी कि पांचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती हैं। ओके, फिलहाल यहाँ पर राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये दिल है कोई शीशा वाला गाना अच्छा लगा। इनायत जी का गजनन जी लिखते हैं ये पसंद मुझे अच्छी लगी है, रब्बा इश्क ना होए। थैंक यू सो मच मुसिया जी। और जाकिर जी लिखते हैं कि रब्बा इश्क ना होए हॉट टचिंग सॉन्ग है, थैंक यू सो मच सुनवाने के लिए। और राधा कृष्ण को लिखते हैं कि ये डिमांड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सिया जी को। और अशोक अभिषेक सक्सेना जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं अभिषेक सक्सेना जी। अगला डिमांड दीपक कुमार गायकवाड़ जी का।
1: नमस्कार अमन जी, कैसे हैं आप?
0: बहुत अच्छे, आप बताइए।
1: आज की थीम चॉइस में मैंने भी एक गाना दिया है, फिल्म का नाम है द डर्टी पिक्चर और गाने के बोल हैं तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। और इस शानदार गाने में शानदार आवाज़ दी है कमाल खान ने, तो आप सुना दीजिए मेरा गाना, सबको सुना दीजिए। मैं दीपक गायकवाड़, सिवनी मालवा, मध्य प्रदेश से, धन्यवाद।

0: बिल्कुल इश्क सुफियाना मेरा, और यहाँ पे गाजा नंजी रख देंगे दीपक कुमार गायकवाड़ जी के पसंद डर्टी पिक्चर का गाना अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं उनको। और ईश्वरलाल महल लिखते हैं वाह क्या गाना है, मजा आ गया सुन के, धन्यवाद देते हैं। और बाबूलाल जी लिखते हैं दीपक कुमार गायकवाड़ जी की डिमांड बहुत ही प्यारी है। और राहुल पासी जी लिखते हैं इश्क सुफियाना मुझे गाना बहुत ही पसंद है, और ये फीडबैक सुनते हैं।
1: अमन जी आप कितने लोगों की फरमाइशें पूरे करते हैं, उनका दिल खुश करते हैं, मेरा भी आपने दिल खुश कर दिया मेरी फरमाइश पूरी करके। और एक ही बात बोलूँगा, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो अमन जी, जुग जुग जियो, धन्यवाद। मैं दीपक गायकवाड़ सिवनीमाला मध्य प्रदेश से।
0: अगला डिमांड हमारा अभिषेक तिवारी जी का है, ये सुनना चाहते हैं इश्क जुनू, एंजॉय कीजिए।

मतलब इन मजा तो इन तभी आता है कि जब इन सभी लोग अलग अलग तरह के गाने भेजें। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ, ये जो रेडियो है ना, वैसे तो हम गाने हर जगह सुन सकते हैं, बहुत सारे मतलब इन प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ पे जो गाने को ढूंढेंगे वहाँ पे आराम से आपको मिल जाएगा, आराम से सुन सकते हैं अकेला। लेकिन ये जो गाने की डिमांड करके वो गाना जो इन सुनवाने का जो मतलब मज़ा है ना, वो दोस्त आपको फीडबैक देते हैं, आपके गाने को पसंद करते हैं और आप अपने गाने को, अपने बेस्ट से बेस्ट गाने को आप दूसरे को सुनवाते हो, इसका मजा कुछ और ही है, ये कहीं नहीं मिलने वाला है। वैसे फीडबैक मेरे पास बहुत सारे आए हुए हैं और शिल्पा बहन लिखते हैं कि ये तेरे वास्ते वाला गाना मुझे इश्क सुफियाना गाना अच्छा लगा, दीपक को मैं गायकवाड जी को धन्यवाद देते हैं। राहुल पासी जी लिखते हैं कि अभिषेक तिवारी जी का भी गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा है। और नेटवर्क स्लो हो रहा है, माय गॉड। और ईश्वरलाल जी लिखते हैं जबरदस्त झक्कास गाना, ओके। और प्रमोद कुमार लिखते हैं ऑसम सॉन्ग, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए भी। और गजानंद जी लिखते हैं अदानी है, अमन सर जी आज का प्रोग्राम शानदार हुआ है, धन्यवाद देते हैं आपको भी। और अकुंता जी लिखते हैं शानदार डिमांड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और राधा कृष्ण को भी लिखते हैं बहुत ही शानदार डिमांड। अगला जो डिमांड है मैं प्ले करूंगा बिंदिया जी का, बिंदिया जी सुनना चाहती है ये गाना, एंजॉय कीजिए।

और अभिषेक सक्सेना जी आज के थीम पर भेजिएगा तो मैं कोशिश करूंगा। और मुझे नहीं लग रहा कि आपका गाना थीम पर है। अगर मुझे आज के थीम का जो जो है ना शब्द मैं बता दूं कि वो है, एक बार मैं फिर से बताता हूँ, वो है दिल, धड़कन और यानी प्यार, मोहब्बत, इश्क, चाहत, जान और दीवानगी है। अगर इन इन यानी कि शब्दों पे आपका गाना होगा तो मैं ज़रूर गाना प्ले करने की कोशिश करूँगा। प्रमोद जी कहते हैं कि बहुत ही बेहतरीन डिमांड है, धन्यवाद देते हैं। और ईश्वरलाल जी लिखते हैं कि दीपिंदा जी की डिमांड बहुत ही प्यारी, सुपर से भी ऊपर है। गजानंद जी लिखते हैं कि अभिषेक तिवारी जी और पिंडा जी की पसंद मुझे अच्छी लगी है, शुक्रिया। बाबूलाल जी लिखते हैं कि पिंडा जी की डिमांड बहुत ही प्यारी है, ओके जी। अगला डिमांड है वो शिल्पा बेन जी का है, और शिल्पा बेन जी सुनना चाहती हैं बहुत ही प्यारा गाना, तो सुनाऊंगा जरूर।

0: वेलकम बैक ऑन। इस बार तो मैंने आपका गाना करीब यानी कि 3:52 तक चला दिया है। इसके लिए अब मत कहिए कि मैंने कम प्ले किया है, क्योंकि मुझे डर भी लगता है कि आप लोग नाराज ना हो। और राहुल पासी देखते हैं कि नए सॉन्ग सुनने को मिल रहा है, मजा आ रहा है सुन के। और गजानंद जी लिखते हैं कि ये भी यानी शिल्पा बहन जी के पसंद लाजवाब लगे, उनको भी धन्यवाद देते हैं। और ईश्वरलाल जी लिखते हैं कि लाजवाब सॉन्ग। अगला जो डिमांड है हमारा अजय भगत जी का है, सुनना चाहते हैं ये प्यारा सा गाना, एंजॉय कीजिए। ओ माय गॉड, इनका गाना डाउनलोड ही नहीं हो पाया है।
1: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार थीम चॉइस शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार ऑफ द वीक में सुनिए दिए गए स्टार मेहमान पर आधारित गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार की ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

0: तो बता दो कि बहुत जल्दी ही यानी न्यू आरजे आने वाली है, नाम है आरजे कनिष्का, हाँ शायद वही नाम है, वो आने वाली है और भी, और अदिति भी आने वाली है, वो रात में आएंगी, लेकिन वो आएंगी सुबह में, तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको, वो जल्दी आने वाले हैं वो लोग। ओके, और फिलहाल मैं आपको बता दूं ये फिर
1: आरजे अमन सर जी, आज की थीम बहुत ही लाजवाब थी और सारे दोस्तों ने प्यारे प्यारे गाने डिमांड के रूप में भेजे और आपने प्ले करके हमें सुनवाया, आपका तहे दिल से शुक्रिया और दोस्तों का भी शुक्रिया। मैं आरिफ सिंधी, सुनते रहो रेडियो हॉट स्टार आरजे अमन सर जी के साथ, जो दीवाना बना दे।
0: ओके, वेलकम है आपका भी। और राहुल पासी जी देते हैं कि ये सॉन्ग मुझे बहुत ही प्यारा लगा है, धन्यवाद देते हैं। और राधा कृष्ण को मिलते हैं कि बहुत ही शानदार डिमांड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अजय भगत जी देते हैं कि थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। ओके जी, और हमारे ईश्वरलाल जी लिखते हैं कि वाह क्या पसंद है आपका, दिल से आपने दिल खुश कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और शिल्पा बहन लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी मेरी रिक्वेस्ट को प्ले करने के लिए। और जी कोई बात नहीं, आप शिकायत कर सकती हैं, नो प्रॉब्लम। अगला जो डिमांड है हमारे ईश्वरलाल मेहर जी का है, वो सुनना चाहते हैं तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा रे, सच में का, एंजॉय कीजिए।

गाना है और राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा है, मजा आ गया गाना। और अमृता भी लिखते हैं कि बहुत ही बैड डिमांड के लिए धन्यवाद देते हैं शिल्पा बेन जी को, ईश्वर लाल मेहर जी को, सभी को।

और मैं सोच रहा हूँ कि मैं कल लाऊं स्टार ऑफ द वीक में यानी कि के को, तो आप लोग क्या कह रहे हैं, यानी के सही रहेंगे? मेरा सिंगर बेस्ट।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दिया। और यहाँ पे सिंपल बेल लिखते हैं कि अमन जी आपने कहा कि हम गाने तो यानी मतलब हर जगह सुन सकते हैं, लेकिन जो यानी यहाँ पे सबके साथ मिलकर सुनने का जो मतलब मजा है उसमें आपकी आवाज़ जो यानी गुजती है वो रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना देता है वो तो कहीं मिलने वाला नहीं है। अच्छा जी ओके, इस बार जी लिखते जबरदस्त गाना है और हमारे गजानंद जी लिखते दोस्त रवि मोहर जी को पसंद अच्छी लगी है, उनको धन्यवाद देते हैं। और अगला जो डिमांड अवधेश कुमार जी का है सुनना चाहते हैं, दर्द दिल जीने का मरने का मजा देगा।

0: ओके, तो आज का आखिरी गाना मैं प्ले करने वाला हूँ, नाम है इनका विनोद मिश्रा जी। और चूंकि भाई मुझे तो जाना पड़ेगा ना, और ये जाने वाला ही गाना लेके आए हुए हैं, तो इंजॉय कीजिए। और सुनना चाहते हैं साथिया नहीं जाना के जीना लगे,
1: साथिया
0: जाना पड़ेगा भाई। और इसी गाने के साथ दीजिए मुझे प्रोग्राम से निकलने की इजाजत। मिलते हैं फिर कल शाम 6 बजे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब खैर, बाय बाय।

0: बरसों बाद ढूंढने निकली हूं। ऐसा लगता है कि वो किसी औषधि की बात थी।
1: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
0: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
1: एक काम करें, जब तक तुम यहां हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ?
0: भूल गई। ना ना,
1: तुम नहीं बदलोगी।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 12 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।
1: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चले जाए।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

बंधुओं बजाइए ढोल और बजाइए बाजा।

हाँ तो सज्जनों सुनो सहेलियों की कहानी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, हाँ, अरे अरे

0: तुम लोग हंस क्यों रहे हो?
1: हंस नहीं रहे दोस्त, रो रहे हैं तुम्हारी अकल पे और हम सबकी बेखूफी पर। एक दीवाने ने ख्वाब देखा जंगल में और उसकी तस्दीक के लिए हम सब दीवाने तुम्हारे दरबार में पहुंच गए।
0: ये दीवानगी नहीं, हकीकत है। मैंने अपनी आंखों से उन दो इंसानों को सांप बनते हुए देखा है। विजय, पहले तो तुम्हारी सिर्फ दिमाग पे शक था, अब मालूम होता है कि तुम्हारी आंखें भी जा रही हैं।
2: हम ये कैसे मान सकते हैं यार कि एक सांप जब चाहे इंसान का रूप धारण कर ले और जब जी में आए फिर से सांप बन जाए।
3: मैं तो कहता हूँ ये तुम्हारे दिमाग का फतूर है और कुछ नहीं। मुझे तो सोचकर भी हंसी आती है यार।
0: चंद साल पहले तुम्हारे जैसे लोग चांद पर जाने वालों पर ऐसे ही ऐसा करते थे।
4: ओ फिलोसोफर साहब, आप अपनी फिलॉसफी से सच को झूठ में नहीं बदल सकते।
0: अरे भाई, ये इच्छाधारी सांप सदियों से है और जो बात सदियों से सच है वो आज भी सच है, समझे?

0: गोली किसने चलाई?
1: मैंने।
0: क्यों?
1: अगर मैं गोली नहीं चलाता तो नाग उस लड़की को डस लेता।
0: वो लड़की नहीं है बेवकूफ, वो नागिन है, और जिस नाग पर तुमने गोली चलाई है उसे मैं इंसान के रूप में देख चुका हूँ, उससे बातें कर चुका हूँ।
2: लेकिन अब क्या करूँ, पिस्तौल से निकली हुई गोली वापस तो नहीं आ सकती?
0: जिस तरह पिस्तौल की गोली वापस नहीं आ सकती, इसी तरह नागिन का बदला कभी टल नहीं सकता। कहते हैं मरने वाले नाग की आंख में मारने वाले की तस्वीर रह जाती है, और नागिन उस वक्त तक चैन से नहीं बैठती जब तक वो खून का बदला न चुका ले।
3: तो अब क्या किया जाए?
0: किरण के बचने की सिर्फ एक ही सूरत है, हमें फौरन उस नाग को ढूंढ के जमीन में दबा देना चाहिए ताकि वो नागिन अपने नाग की आंख में इसकी तस्वीर न देख सके।
3: लेट्स सर्च।
0: हाँ चलो।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

वहाँ पे